पीत बनाई रजपच रैत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाख्यो तो है पुकार सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो।

संग छार सब पागे। कहो कहा जया मन बौरे को इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो कयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लाग्यो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हर शोभ ते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

आता गुर कृपा जे नरको कीनी ते एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यों ही जग पांदे हो को काहू को नाही राओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु जिसके रह विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत ने रह कर की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी ए बिद को व्योहार बन्यो है जांस्यो न्यो लगायो अंत बार नानक बिन हरजी को कामना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो मरे मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा।

पत साई मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन वेदिया मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यो लिव लाई रहाओ असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हृदय शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेतै मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे।

दूजा भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख।

जग जोनी सिर सिर लेख सहामंग कर्म सो कर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामंग मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामंग जिन चाखिया से ही साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथ है का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाल है पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कह कहावे तत्तो तत्व खानं शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सोरठ महला पहला तित की आशा मन सा बंदनी पाई कर्म तरम बंधकारी पाप पुन जग जाया पाई बिन से नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल न चूकी पाई अंतर मैल विकारी इन विद डूबी माकुरी भाई ऊंडी सिर कह पारी दुर्मत कणी विगूति पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम न पाई पाई बिन नाम में परम न जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आमन जान रहाई साच सहज गुरते उपजे पाई मन निर्मल साज समाई गुर सेवे सो बूजे पाई गुर बिन मग्न पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही विलोइए पाई विचो निकले तथ जल मछिए जल देखिए पाई ए जग ए हावत गुर बिन परम विगूचिए पाई कट कट देओ अलख एह जग तागो सूत को पाई दैदिस बांधो माए बिन गुर गांठ न छूटे पाई थाके कर्म कमाए एह जग परम फुलाया पाई कहना किछू न जाए गुर मिले पौ मन

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेव्या प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पा।

बुर बिन अलख ना लखिए पाए, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकुर हाथ वडाया पाए, जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई, साच कह पिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अधिक रही हर नाए। सब को आख है आपना पाई, गुरते बूझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुवाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया, हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ, भगतां नू जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाए। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मन मुखा नू प्रतीत ना आवे, अंतर लोभ सुआओ। गुरमुख हिरदय शब्द ना भेजो, हर नाम ना लागा पाओ, कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका लाओ। भगतां विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मो सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विदाता। हौं मैं मार मनसा मने समाणी, गुर कै शब्द पछाता, अचिंत काम करें प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वस्या, सब काज सवारन हारा। ओना की रीस करे सो विगुचे, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मन मुख पौ के मुए बिल लाई, आवे जावे ठौर न पावे, दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई, बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई, सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर शरणाई। जिन हर मन वस्या से दर साचे, दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोए न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राख्या उधारा, सोरठ मैला तीजा दुत की, निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए। हर जियो आपे बख्श मिलाए, गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लेर लाए रहो। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे, साचे शब्द विचार, पौजल पार उतारन पाई, सतगुर बेड़े चार। मनूरे ते कंचन भय भाई, गुर पारस मेल मिलाए, आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हौं वारी हौं वारणे पाई, सतगुर को सद बलिहारे जाओ, नाम निधान जिन दित्ता पाई, गुरमत सहज समाओ, गुर बिन सहज ना उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विच्चों आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई, पौ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाई पाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवे अपना पाई, तिनके हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बख्शाए। सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै पाई, तिस बिघन न लागे कोए। सोरठ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे पाग मिलाए, सदा सुख सोहागणी पाई, अंदिन रतिया रंग लाए। हर जी तू आपे रंग चढ़ाए,
गावो गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावणी पाई, आप छोड़ चित लाए।

प्रम्पो होवे नाथ, मिल संत सवा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास। गुरु बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सबकी तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला परपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरुमुख कमल प्रगासी है पाई, हृदय होवे प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई, एनस लागा पाओ। रसना राम रवै सदा पाई, साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई, हों तिसके बल जाओ। ओ निर्गुणिया रे पालदा पाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला परपूर। सास गिरास ना विसरे पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा परपूर। जिना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई, पौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तोनो अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, पोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई, जे किलबिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तैं अपना नाम जपाया। बाहर काढ़ बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया। जिसनों की तो कर्म

तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची शरण आए।

रोग पुंचाए फुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहु तेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जोगुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगे मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे

हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल न उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहुविध दान दातारा अन्न वस्त्र पूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडौत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंदन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर्ष्यों संग न गया।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साज न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग ना जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया। गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर कंधे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए तिसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए। मन की सार न जाननी हों मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड भाग वस्या मन आए पै पय मन वस होवा होमे शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना जां पकड़ चलाया काल ता

फिर मिलन ना पाए नहीं जब मैं ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना हर

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। सिर हर नाम तियावे जो हर रत्या, हर इक तियावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम तियावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, विम गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक

जा। हर गुण तोट ना आवई, कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे, गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी, कड पैंदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई, बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा, अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक, जिस बुझाए आप हर, जन नानक कह विचारा। गुरमुख हर सत हर, श्लोक महला तीजा। पर थाए साखी महापुरख, बोल दे सांझी सगल जहाने, गुरमुख होए सो पौ कर।

कीर्ति सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुके ना संसार विचों जाए नानक नाम विहोणिया मोकाले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलहारी सतगुर तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

जाए। नानक गुरमुख मिले वडिआइआं, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले साहर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप

है सब राज सुष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार।

तन पाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन पाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन पाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। तन तन

बिन सतगुरु नाउ न पाये बुझो कर विचार नानक पूरे पाग सतगुरु मिले सुख पाए जुगचार। महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मनमुख।

आए। नानक जे गुरुमुख करें सो परवान है, जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हों बलिहारी तिन कहो जो गुरुमुख सिखा, जो हर नाम ते आए।

कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अनदिन भगत हर उचरे, हर भगति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमती हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया, सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिरके पाणे।

सतगुरु मिले ता पूरा पाई है, हर रस रसन रसाई पौड़ी। रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना। तू दाता दातार तेरा दिखा खावना, भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पही मत मद्दम, सतगुरु की प्रतीत नाही। अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपे कपाही। सतगुरु का पाना चित ना आवे, अपने स्वाय फिराही। कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाए।

हौ मैं खपै खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कबू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

आपके सुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई, वडियाई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई। सोदे राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई, ओइले जारे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई, मन रे संसार अंध गहेरा

पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम

मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया आप।

निज निरखत गत व्यवहारा राव कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन

एक बस अगोचर लही है, बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जान्या, जब जान्या तो मन मान्या, मन माने लोग ना पतीजै।

पया पिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब

तीन पकरफा क्यों और काट्यो राम कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरो पानी आपन बापे ना ही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

मारा चरमटा गांठ न जनी लोग गठा वे पनही राव पार नहीं जे तोपो नहीं राम भी ठाओ रोपो लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा हाँ बिन गांठे जाए पहुंचा रविदास जपे राम नामा मुझ जमस्यो नाही कामा राग सोरठ बाणी भगत की खनकी।

ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जा।

दिन चुप चुप होए रहाओ तनाश्री मेला पहला। हम आदमी हाँ इस दमे मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसै सरेवो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख चेते के दिना, रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक शायर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किस पाये पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिया चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नजरी नानक नहीं कोए, कनासरी मैला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे परगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मुझ चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

चोर सलाहे चीत ना पीजे, जे बदी करे ता कसू ना छीजे। चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़े यार,

को जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़या बूझे सो प्रवान, जिस सिर दरगे का निशान, तना श्री मेला पहला हर तीजा।

पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति।

सहस मूरत नन एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस पद गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम वासा। त्रासरी मैला तीजा, कर दूजा चौप दे इको अंकार। सतगुर प्रसाद। ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए। से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन परगासिया। हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए। पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साची बाणी। सुख मन अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई। दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक न पाया जाए। गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एक को सोए। गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम मिले मन मानिया, त्रासरी मैला तीजा। हर नाम तन निर्मल अच अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा। नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान। गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती। पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए। जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए। साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग। तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

आई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नगर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लो भाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उगरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई, पगत

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभु साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी शब्द सुनाए। प्रभु साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मेला तीजा, जो हर से मैं तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड कुसत तृष्णा अगन बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ता आप जाए। साथ महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मेला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर दे वडियाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध सा दे जन कोई, अचर करे ता निर्मल होई। गुरमुख ए

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान।

अवर न कोई, जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा घर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम बिटो, करण कारण सब

हमारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहे न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ। जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी, जो कंचन बै संतर पायो, मल पापी कटक उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जपियो, तिनका दुख परम पौ पागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैवागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिग लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गत मित कह न सके, प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तना श्री मेरा चौथा, हर का संत सतगुरु सतपुरखा, जो बोले हर हर वाणी, जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमक तल, सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी, जिन जपियो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से, सब लाथी पुख पुखानी। जिनके वड्डे पाग वड ऊचे, तिन हर जपियो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तना श्री मैला चौथा।

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा कल युग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साख जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चना की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुर पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ते आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर से प्रीत बन आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई। तनासरी मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर दिनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट तब

भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। त्रासी मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिनके सब दलिहारे जाओ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। श्री मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

नहीं रहा, आपे गुर चेला है, आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, अवर सब त्याग को है हर पानी, त्रासी मैला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे ओट पराध मिटे खिन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे पगत को है दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। रात्रि मेला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोग मोहयो प्राणी माया को लपताना, हत रचियो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना।

किस के बहराई ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर करायो मन का बिरहा मेल कियो मेरे राजन बिन सियो टीठा अमृत बूठा सबद लगो गुर मीठा जल थल मैया।

मन गायो, कयो प्रगास सदा सुख मन में, सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया, ता दुख परम को पागा, कई प्राप्त वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा, चिंत अचिंता।

कछु होते तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है तांते कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे न भूखा उद्दम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा काम वंक कामी बहु नारी पर ग्रह जो न चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लोभ मह सूके हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के नानक गुर ते जाना तनासरी मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ मौल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई वर्ण न साको उस्तत ताकी कीमत कहन न जाई काल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला पोत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला तनासरी मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी नाम लैत कोट अगमासे, भगत बांछे सब तूरी सर्व।

एक निधाना पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सिमरत पार कराना शीतल शांत महा सुख पाया संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

प्रीत अमृत संग नहीं रुच आवत दिखै ठगोरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस युग में पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद है जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई सास पास मन नाम समारे ए विश्राम निद पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवे सब मध्ये जब तक देखो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निज पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनाश्री मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओह डीठी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ हों बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया बूझी पाए जले संसारा भगत ना व्याप माया संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनाश्री मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले तनात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक स्नाना उन दान बहु देन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव जाप ताप प्रमन बसबा कर उर्द ताप ले गैन ए विद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हाथ तारिया, पतित पुनीत किए खिल पीतर, सगला रोग बिदारिया रहा, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, फुंगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक, पुनः पुनः।

गुरु समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ, सुर्ग मृत कयाल पू मंडल, सगल व्यापे माए जी उदाहरण, सब कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये, पाये सर्व निधाना, कर कृपा।

कामना आवे से जंजाल, संग ना चाले तिन स्यो हीत, जो गहराई से ही मीत। ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा, साथ धर्म नहीं पावे दीठा, झूठ तो क्यों रचो मीठा, दात प्यारी विसरिया दाता।

चारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तर्म सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछो ताने जो तुद पावे सो परवान तेरे पाने नो कुर्बान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा तना श्री मैला पंजवा मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत ताके आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा अतमस्कीनी संत वडाई हर जस्तीनी अनद संतन के भगत गोविंद सुख संतन के बिन सी चिंद जह साध संतन होवे इकत्र तह हर जस गावे नाद कवित साध सभा में अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम देकर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुण पास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संतां दूर तनाश्री मैला पंजवा सो कट डरे जे खत्म समारे डर डर पचे मन मुख विचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल साध संगत होवत परगास जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासे गुरमुख जाके मन तन बासे जिसनो आप लए लड़ लाए दरगे मिले तिसे ही जाए सेई भगत जे साचे भाणे जम काल ते पए निकाणे साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार कट कट अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरेणार तनाश्री मैला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कर बाहर तेरा दरवासा तू जन कह संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति ए विद जाति तनाश्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ से पाए कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर पाके जिनके मन साचा विश्वास टेक टेक स्वामी की शोभा अनद सदा उलास रहाओ चरण शरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो त्रासरी मैला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर दूर कथो न जाई रव रया सर्वत्र में मन सदा त्याय ईत ऊत नहीं बीछड़े सो संगी गनिये दिन सजाए जो निमक में सो अलप सुख पनिये रहाओ प्रतपाले अप्याओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अचल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा तनाश्री मैला पंजवा जिन तुम तेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ अनद मंगल गुण गाओ सहज तुन नेकल राज कमाओ तुम कर आ

तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाचन पाजन थाके, पर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खत्म निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल पू मंडल, मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे, नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करण हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरदीना जियो। किस त्यों ना लाई हीत, जा को किस ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय। तना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना। देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार, नानक मन लगना।

राज माल जोबन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जाम है संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे सनातरी मैला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता दिल सुना कतहू जात सतगुरु पूरे की नींदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात सनातरी मैला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ये बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी सनातरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथ ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती सनातरी मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप सनातरी मैला पंजवा चतुर दिशा की नो बले अपना श्री ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शन

सगल मनोरथ पूर्ण होवे। सिमरो तुमरा नाम रहाओ, चरण तुम्हारे हृदय वासे। संतन का संग पावो, शोक अगन में मन ना व्यापे। आठ पहर गुण गावो, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा। मधंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर। बाहुर जन्म न छापन, सनासरी मैला पंजवा। मांगो राम ते सब थोक, मानक को जाचत श्रम पाये। प्रभ के सिमरन मोख रहाओ, कोखे मुन जन सिमरत पुराना। वेद पुकारे कोख, कृपा चंद सेव सच पाये। दोवे सुहेले लोक, आन अचार व्यवहार है जेते। बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पे काटे। मिल साधु बिन से शोक, सनातरी मैला पंजवा। कृष्णा बुझे हर के नाम, महा संतोष होवे गुर बचनी। प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ, महाकलोल बुझे माया के। कर कृपा मेरे दीन दयाल, अपना नाम दे जप जीवा। पूरन होए दास की काल, सर्व मनोरथ राज सुख रस। सब खुशियां कीर्तन जप नाम, जिसके कर्म लिखिया तुर करता है। नानक जन के पूरन काम, सनासरी मैला पंजवा। जन की कीनी पार ब्रह्मसार, निंदक टिकन न पावन मूले। उड़ गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तें तें स्वामी। कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवज्ञा। जन की होए गया तत्सार, करण हार रखवाला होआ। जाका अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभु तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से काढ़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साधु पूरे। प्रभु बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वडे भाग पेते गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन चिन्ह में तारा।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर सट ही खोजो पाई। बाहर पीतर एको जानो के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन मिटे न परम की काई। सनासरी मैला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सांस्यो मन न लगाना, जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाना। तनाश्री मैला नावा तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता सुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो, हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। सनासरी मैला नावा अब मैं कौन उपाय करो, जे बिद मन को संसा चूक है, पौ निद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यों उदर परो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तय काटन हारे, हों मैं मार मिले भगतारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी पर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, नाथ स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाए, बिन गुरु पे ते मर

हे गुरु करो जे साच दृढ़ावे अकप कथावे शब्द मिलावे हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा। तन में मनुआ मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ के लागे पाए सतगुरु पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखे हथ ना पतीजे ना बहुते खै कर पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पर फूले चोटा खाए बहुत सियान पावे जाए नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पे उदासा मन मैले सूचा क्यों हुए साथ मिले पावे पत्सोए आचारा विचार शरीर आज जुगाद सहज मन तीर पल पंकज में कोट उदारे कर कृपा गुरमेल प्यारे किस आगे प्रभ तुझ सालाही तुद बिन दूजा मैं को नाही ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए नानक सहज पाए।

जायो मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे हो रे पेट है संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद नह चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने तद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल अश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खै मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे घट होए हमारी को प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना, सात ना लागे मैल क्या मल धोये, गुणे हार परोए किसको रोये, विचार मारे तरे तारे उलट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख तिल विख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सबद सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत सते, आराद एकंकार साचा नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को एके वड आखी है, हौ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन कोट न पगत पनारी पर पुर रहे सोई, नानक साथ कह बेनंती मन मांजे सच सोई, तनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया फिर न सके कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोई आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो, दो रहा चलाए हुक्म सवाए जन्म हुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म न बूझे हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब सबत सिंजापे साचा सिरजनहारा, भगत सोहे दरबार सबद सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए गुर के शब्द विकाने, पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने, अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी, भूख प्यासो आज क्यों दर जाए साजियो, सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए साजियो, सच नाम ते आए साच चवाए गुरमुख साच पछाना, दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना, करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी, तनासी संत मैला पहला, तिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख ना मिटई पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी, तन जो बन आख की छाया बिर्द पै दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण
छूटी झूठ विछुनिया। बूढ़ी कर का लियो गुर कह पाए चलो, साचा नाम ते आए पावे सुख महलो। हर नाम ते आए ता सुख पाए, पेई एड़े दिन चारे। निज कर जाए बह सत पाए, अन दिन नाल प्यारे। बिन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए। नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए। फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो, रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो। गुर शब्द विचारी ना प्यारी, निव निव भगत करे। माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे। प्रभ साचे सेती रंग रंगेती, लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण, फिर स्यो प्रीत प्यारी। फिर कर सो है नार, जे फिर पावे जियो।

गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए तन सुहागन नार जिन पिर जानिया जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती तिर रली आला जो बन बाला तिस रावे रंग राती गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे ता पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी हम दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे। अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरे। सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी। हलत पलत सोबा जग अंतर राम नाम लिव लागी। हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सुभावे। सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया मेरी मेरी करत विहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम से आया। नामो नाम मिली वडिया।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत न...

काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन बिद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैस न निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहानि होरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो, ओछे तप कर बाहुर एबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज बिदे बड़याई, अंत न पाहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

राम नाम छाड़ अमृत काहे बिखाई, तज परम कर्म विद निखेद राम नाम लेही गुर प्रसाद।

आई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

आई। बारह जो जन छत्र चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बक्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो। पाछे बौर नावन पावो अमृत बाणी कटते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तम ही छूटो जो माया नह लिपटाओ। माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला। जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला। जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा। मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला। सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा। असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंडी में सागरा रहाओ।

जम कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव दिन भगत नहीं होए तेरी कह

मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। रहाओ नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पै उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे।

गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ संतरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहना पारवी कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राम।

रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पै तार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निद पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो

सतगुरु होए लखावे तन्ना। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया सागननी का अनाज मंगो सबसी का, गऊ पैस मंगो लावेरी। इक साजन तुरी चंगेरी, सर की गीहन चंगी, जन तन्ना ले वे मंगी। जैत सरी महला चौथा, कर पहला चौप दे इकोंकार। सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ तरयो मेरे माथा। जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ, बिन गुर मूड़ पए है मनमुख। ते मोह माया नित फाखा, तिन साधु चरण न सेवे कबहू। तिन सब जन्म अकाथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे। तिन सफल्यो जन्म सनाता, मोको की जय दास दास दासन को। हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजे, जन नानक चले मिलन था। जैत सरी मैला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी। माया पुअंग बिख चाखा, हर हर साध मेलो जननी के। हर साधु शरण हम राखा, हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी। हम परे पाग तुम पाखा, जेवा क्या गुण आख वखाने। तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी। पाखान डुबत हर राखा, जैत सरी महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिल साधु कपट खुलाना रहाओ, गुर किन किन प्रीत लगावो। मेरे ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना, दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर। ज्यो अमली अमल लुवाना, जिन मन प्रीत लगी हर केरी। तिन तुर पाग पुराना, तिन हम चरण सरे वे खिन खिन। जिन हर मीठ लगाना, हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर। जन बिछरिया चिरी मिलाना, तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया। जन नानक तिस कुर्बाना, जय श्री मैला चौथा। सत गुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध। गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ, तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु। मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई। हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा, तिनके पाग खीन तुर पाए।
जिन सतगुर दर्श न पाए बा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाए बा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे हम हर मीठ लगाए बा जन नानक रेण साध पग मांगे हर होए दयाल दिवाए बा जैत सरी मैला चौथा जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बांजा तिन सुन्नी देख रैन बिन नावे होए खप खप मोए करांजा मेरे मन जप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ हर कीरत कल युग पद उत्तम हर पाई है सतगुर माजा हाँ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वडपागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साओ पाया वडदाना हर किए बहुगुण साजा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन माजा धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा जैत श्री मैला चौथा सत संगत साध पाई वड पागी मन चल तो पयो अरूड़ा अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तार रस लीड़ा मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ साकत बंद पए है माया बिख संचे लाए जकीड़ा हर के अर्थ खर्च नह साके जमकाल सह सिर पीड़ा जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा हलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा जैत श्री मैला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर हर सिमरो अगम अपारा जित सिमरत दुख मिटे हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिए सुख होई राम हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उधारे हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिए प्रगट होई राम मधुसूदन हर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना हर हर दया करो गुर मेलो पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता हर हर महापुरख गुर मेलो गुरु नानक नाम सुखोई राम जैत श्री महला चौथा हर हर हर हर नाम जपाहा गुरुमुख नाम सदा ले लाहा हर हर हर हर भगत दृढ़ावो हर हर नाम उमाहा राम हर हर नाम दयाल त्याहा हर के रंग सदा गुणगाहा हर हर हर जस कुमर पावो मिल सत्संग उमाहा राम आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम ले लाहा हर हर कृपा तार गुर मेलो गुर मिलिए हर ओ महाराम कर कीरत जस अगम अथाहा खिन खिन राम नाम गावाहा मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते हर नानक भगत ओ महाराम जैत श्री महला चौथा रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना ले लाहा
खिन खिन भगत करे दिन राती गुरमत भगत को महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाए सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा आपे सतगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे गुरु नानक नाम ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन मिल सत्संग ओ महाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप ओ महाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम।

प्रसाद सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहा जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवधे, तामे संतोख न पाया, हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये, जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। दिनो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिस चिन्ह ना लखिए, सुहागन शांत बुझियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पयो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जैत सरी मैला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्प

कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से परम अंधेरा। थान सनंतर सबनी जाई जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग, तजी सियानप चिंत विसारी, अहंक छोड्यो है त्याग रहाओ। जो देखो तौ सगल मोय मोहियो, तौ शरण पर्यो गुर पाग, कर कृपा टहल हर लायो, तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जाओ, संत पेटे वड पाग, जन नानक सर्व सुख पाए, मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी मैला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान तरा, दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभ जियो मया करा रहाओ। ताल जाल अर महा जंजाला, छुटके जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करुणा पत, गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग, पवनिद पार परा, अपियो पियो गत थियो परमा, कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा। जाको पय गोविंद सहाय, सुख सहज आनंद सगल स्यों, वाको ब्याज न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा, ने व्यापे उन माई, एक रंग तत के बेते, सतगुर ते बुध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की, सेई संत सुभाई, तिनके संग नानक निस्तरिय, जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे में दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनेक बार करो ते बंदन, मने चरावो तूप। हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे, दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को, संसार पावक के कूप। जैसरी महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर रहाओ। मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचे सुधा संजोर, या रस में मगन होत किरपाते, महा बिख्याते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ हर

कर कृपा साधु संग पेटे, पूरन पुरख सुजान रहाओ। प्रेम ठगोरी जिनको पाई, तिन रस पियो पारी, ताकि कीमत कह न जाई, कुदरत कवन हमारी। लाए लाए लड़दास जन अपने, उदरे उदरन हारे, प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो, नानक शरण द्वारे। जैत सरी मैला पंजवा, आए अनक जन्म प्रम

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौ।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नामा हरजू।

आओ। महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा, तै मरबे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण देह दिस कौ उठ धाया, कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप।

नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहाओ जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जग तुम्हें हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग

संत। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया, तिस दस प्यारे।

आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

बधाई। माँ मंगल रहस थिया, फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया, साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी, त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ, नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गनो असंख अवगुण मेरिया, असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिये, मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिये, लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया, सलोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ, नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत, दूसर नाही ठाओ का पह जाई है, आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है, श्लोक रे मन पासो त्याई है, सब विद्या के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभे साथ संत, साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए, थान थनंतर आप जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी, गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी, पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए, श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया, नानक नाम त्याए सुख समाया संत, अब मन छूट गया साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले, हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या, गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या, ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले, बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले, जैसरी छंत मैला पंजवा। पाधानो संसार गर्भ अटिया, करते पाप अनेक माया रंग रटिया, लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए करत बिहावे, पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया, किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया, उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही, पर मैं जोन असंख मर जन में आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे, बीज बोवस भोग पोगे किया अपना पावे, रतन जन्म हारंत जुए प्रभु आप न पावही, बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही, जोगन गया बतीत जरमल बैठिया, कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया, नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया, कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया, चरण कमल शरणाए नानक आया, दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।